राम निस्तारी रामो राम नाम जपया दुख किल विखनास गवाया राम गुर परचह त्याया

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवे।

मुख गवाई। मन तन सीतल शिंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम। किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पय अपागी, जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया। महाबिखम जम पंथ दुहेला, कलू खत मोह अंधियारा। नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, परमदा इकत कर आणै राम। मन इकत कर आणै सब।

रम ऊचा गुण कहत्या अंत ना पाया नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद्ध गई सुध हुई राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

आम सते सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम। मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

हर हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ। शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई। हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया। मन हिरदय क्रोध जलाए दियो। मन हिरदय क्रोध महा विसलोद। निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना। हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर। देख गुरमत हर नाम लह जाए दियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है। अत किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया। दोए पग टिकै टकाए जियो। महा जुद जोद बहु कीने। विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया। मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए दियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया। हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई। हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे। सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया। मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए दियो। आसा महला चौथा। हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सोहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी। गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी। सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो। हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहोड़ मरना होई, हर हर नाम अम

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत ना पाया तिस रूप नारेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया। सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह सब तेरे शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरे शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ। शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हौ मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

आई। आसा महला चौथा, जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कटे।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पाई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी।

जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

करे, मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे, नानक हर पुर तारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चातरक बूंद जिवें मन

भया गृहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन।

सोहे बंक द्वारी नवनि दे नौनि दे मेरे घर मह आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नव निध पाई सरस अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज बखानी।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे, बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

ताठी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोए सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

सगल परास्त दुख हरे, कहो नानक संत गोविंद हर के, मन हर स्यों ने हो करे हो, ऐसी मन प्रीत हरे, जैसी मछली नीर, एक खिन पी ना तीरे, मन ऐसा ने हो करे हो, जैसी चात्रक प्यास, खिन खिन बूंद चवे, बरस सुहावे में हो, हर प्रीत करी जय, यो मन दी जय, हत लाइए चे

कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै।

गीत की जय। आस्था महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराध ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत हुए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा तार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवह दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई, भेटत साधु संग जमपुर नह जाई। दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल तल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाणै गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ताकै आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटै संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामु शरण पावो, करुणा मैं प्रभ कर मया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

ते संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह तायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझ ते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

सरन आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की सरन गही निरपव भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा हीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अगन सागर पये सीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरले किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जागह संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागह, नाम सिमरह अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। तज मान मोह बिकार मन का, कलम ला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जागह, हरदास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुख हगामी, चाव मंगल रस परी, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरी, मन इच पाई प्रभ ते आई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछ है कहो कंत नीचाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावहे, सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी, सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक सरण स्वामी, सदा हर जन तागे। आसा महला पंजवा, उठ मन वटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करह पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमह हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख पए, नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही, ले चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देह ला पया खिन मह, खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हो।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे। कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे। गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण। बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण। निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा। सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा। गह पुजा लीने नाम दीने कर धारम।

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दोख कमाते वलवंच कर उदर भर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनहु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा।

आया जल थल मही अलरवया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श

उगवह सूरज चढ़ है हजार केते चानन होंदिया गुरबेन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी माने।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाती जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म है अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगै करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

काल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन हो है शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्त ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन ना साह सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणतना अंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसें चल है से रोए उड ना जाही सिद्ध ना होहे नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ किन्ना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाए लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गुआई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

अर तीर्थ नावे हैं अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर परगट आख सुनाया।

बंदना फिर फिर जोनी पाहे। हो मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए। हो मैं एहो हुक्म है पय किरत फराहे। हो मैं दीर्घ रोग है।

नानक कह सुनहु जनहु हित संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन्यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस देवान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया।

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों

मल उतर तन करे हच्छा तूय सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल च छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहै बाहरा पूरे रंग ना सोए भै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक।

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण।

है। सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रह, जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रह, गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुनाहगार, ता उमी साधना मारी है जेहा खाले कालना, तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है, जित दरगाह गया हारी है, अड़िया अत उमिया विचार अगे विचारी है, मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का, एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर बताई है, ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का, धर्म अगै रथवाहु त्रेत रथ जतै का, जोर अगै रथवाहु द्वापर रथ तपै का, सत अगै रथवाहु कल जुग।

तह साच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण।

जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सराए रा, अत दीर्घ अत मोचे।

पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत सब को निमै आप कहो पर को निमै ना कोई तर ताराजू तोली है निमै सो गौरा होए अपराधी दूना निमै जो हंता मिर्गा हे शीस नवाया क्या थी है जारिदैक सुदे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं द्वे तूती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ह कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जाहे तरंदा महला पहला मानस।

पाग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद हुना ते आवह ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिट वे मत पिट एह अन्न असाडा फिट तन फिट फेर करेन मन जूठ चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवै तां सच पाईए पौड़ी चितै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोह कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पह।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

जो पाई नानक सा करमात साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक कहडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है इक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै सवन एक ऊपर रहन खड़े।

गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतिया तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालिया लोटे हाथ निबग वे हर के संतना आखी है बानारस के ठग ऐसे संतना मोह को भाव है डाला स्यो पेडा गटकाव है रहाव बासन मांज चिराव है ऊपर काट

गया न बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरों नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ।

मेरा मन तन भीने, पिता हमारो वद गोसाई, तिस पिता पह हौ क्यों कर जाई, सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरा मन पाया, हौ पूत तेरा तू बाप मेरा, एकै ठाहर दोहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो बहन भानजी, जिन्हें

आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

रहाव बैठ सिंह कर पान लगावे कीस गलौरे लियावे कर कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंख बजावे बंस को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, तिन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। अर्ध शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपराध।

ना खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया ता पी चीत ना राखस माया। चिंत पवन मन

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को पा

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विदबानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा, जमका डंड मूंड मह लागे किन मह करे निवेरा, हर जाने उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावे सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोले बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊ बिचारे कलमा अकलह जाने पांचों मुसम सला बसावे तब तो दीन पछाने खसम पछान तरस कर जी मह मार मणि कर फीके आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके माटी एक पेख तर नाना ता मह ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक

राय, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखे

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकड़ै, तब है काहे रोया, जीम ने की आस करह, जम निहार है सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत ताल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हों, पांचो तत बराती, राम राय स्यों पावर लै हों,

आओ नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर का बिरह जरों रे।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

हो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब

तार चिरायु कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानंग साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जै पासना देख आग, काल पासना मुग्द चेतै कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे अब खुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

जीव के दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा बेद पवन मन सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी हंस हुए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली कुरूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम।

रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाओ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना, सब जागे अनत नायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई, चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना, घट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीरथ नावे, किस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना। पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर फिर जोनी आवे मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र

एक मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाओ जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल में होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काय करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काय करूं। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी।

अपना खसम त्यागू, सोइने की सुई रुपे का तागा, नामे का चित हर स्यों लागा, आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े, उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे, काहे को की जै ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना, रहाओ सिंगच भोजन जो नर जा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर, एक दोख बनास पंच दोख असाध जाम है, ता की केत के आस, माधो अविद्या हित कीन, दुबेक दीप मलीन रहाव, त्रिगद जोन अचेत संभव, उन पाप असोच, मानुखा अवतार दुलभ, तिही संगत पोच, जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल पास अबद लागे, कशना चले उपाय, रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान, आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जा

पाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम यौगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ऊंचा पाती ऊंचा ऊषा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देओ दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देख देख सुन बोले दौर्यो फिरत है रहाओ जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

तन्ने जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनभांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये ज्योत समा

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मह गणिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड़ भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हम

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़ियां मनहूम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया से कहयाती जागना कोई थिर रहया जिसे आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तोड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछै।

जे वेद पढ़ मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जाके त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगरा दोहों लोचन क्या हेरे अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेरे सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरे दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै।

हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई। हर मेरा धन मेरे साथ चाले, जहां हों जाऊं तहें जाई। सो झूठा जो झूठे लागै,

गुर अपने सद बलिहार जाऊं। सतगुर मिले हर मन वसे सहजी रहे समाई रहाउ। जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई। बैरागे ते हर पाईए हर स्यों रहे समाई। से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई। दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई। नानक गुर ते गुर होया

या राम राम सबको कहे, कहे राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसे, तां फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे ना विसरे। हर हर करहे सदा मन चीत, रहाउ हृदय जिनके कपट।

आए, जिस नर की डुबदा ना जाए, धर्म राय तिस देश जाए, कर्म होवै सोई जन पाए, गुरमुख बूझै कोई, नानक विचो हऊ मैं मारे, ता हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होवै, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवै साच बुझाए, बिन पारसै पूज ना होवई, बिन मन परचे अवरां समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाई, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजै, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले है मत उपजै, ता एह सूझी पाए, हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए, एह मत तेरी थिर रहे, ता भरम विचों जाए, रहाओ हर चरण हृदय वसाए तू, किल विख हो वह नास, पंच भू आत्मा वस करह, ता तीर्थ करह निवास, मनमुख एहो मन मुगद है, सोजी किछु ना पाए, हर का नाम ना बुझई, अंत गया पछताए, एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत, सतगुर दिया बुझाए, हथ सठ तीर्थ तिस संग रह, जिन हर हिरदै रहे आसमाए, नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया, एक वस्या मन आए, जो तुद भावै सब सच है, सच्चे रह समाए, गुजरी महला तीजा तीजा, एको नाम निधान पंडित, सुन सिख सच सोई, दूजै भाए जेता पढ़ै, पढ़त गुणत सदा दुख होई, हर चरणी तू लाग रहो, गुर शब्द सोजी होई, हर रस रसना चाख तू, ता मन निर्मल होई रहाओ, सतगुर मिले मन संतोखी है, ता फिर तिछना भूख ना होए, नाम निधान पाया, पर कर जाए ना कोई, कथनी बदनी जे करे, मनमुख

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

रागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोहै कौआ काग कौ अमृत रस पाईए तृप्तै विष्टा खाए मुख गोहै अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है नानक धन तन वड्डे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है गुजरी महला चौथा हर जानी उत्तम उत्तम बाणी मुख बोलह पारे उपकारी जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगहा हर हर दे वडे आई धन पन सबास कह प्रभ जन को जन नानक मेन लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मला।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वास है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गुजरी महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवे है उद्दम, जा आहार हर जियो।

जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया सिर सिर।

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरै हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोधे

अठसठ मज्जन कर इचनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी तावत तावत सब जग तायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी।

आवे। हलत पलत कह संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विखनासह पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाउ। सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आसा कबह न व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा इहो मन होवो हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काट।

कोली उच्चा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथ्या लोभ लबी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

मदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ तिन्ही रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को धनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे है जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंधिसा।

परी अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो धार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाहे समाए तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाऊ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक भई करते की होर आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस हर भोर

आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए रहाउ मोहे सरन दीन दुख भजन।

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाव पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

कीता। मिल साध बचन गोविंद त्याई महा निर्मल रीत रहाउ। जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम। कर अनुग्रहो आप राखे भये पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण।

पितर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कतह नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुरमत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ सात शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चित हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरे ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभु छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

गुरु सो सिख कथियले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदे गिरी जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

जो है बूझ अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

बीच न मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई ऐ जी गुर की दात ना मेटै कोई मेरा ठाकुर आप दिवाई।

कर रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस तेत कंचन तात होई सत संगत की वडियाई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबरह हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं।

मनमुख भगत ना होई, सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुन जन ज्ञान बीचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुमारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे हैं खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाच है, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिन को हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै,

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाइए जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार तरनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुगद मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होए खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मने ता घर ही अंदर दूर, हुक्म पीत ना मनाए सी। जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंतना लायो पावो, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाए किते ना पाईए हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता, सलोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए, ऐसनों कूड़ बोल के खवाली है जे चलदिया नाल ना।

आई नानक हुकुम ना जातू खसम का जे रहा सच सुमाए महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाए इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाए एहो हर धन जीए सेती रव रहिया जीए नाले जाए पूरे गुरते पाई मनमुख पल्ले ना पाए धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सत गहर गंभीरा सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा किरपा ते हर मन वसै भेटै गुर सूरा गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा श्लोक महला तीजा त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे दुख हों मैं पाप कमाए मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत कोई सुख ना पावे अंत गए पछुताए गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस हों मैं विचों जाए नानक जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुर चरनी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाम शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव ओए धर्म रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुआव नानक करता बंत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप हर नाव पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाई सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदै लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोई सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदै सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पावह गुणी निदान हर सुख दाता मन वसै हौ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई तायान दिन लागै ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट वकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता आनंद हर के गुण रवै गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिवलाए

को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा। अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजै, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै,

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है इना ऊपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन।

तिस गुर मिले, गुरमुख निस तारा, सलोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मन मुखा नू गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जालिए, तां एह विचों जाए, तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा, इहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिले, अस्थिर रह समाई,

आसक्त होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर योगी, जो तिस भाव है सो करे, हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते

जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ। वाहु वाहु गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए, वाहु वाहु जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाहु वाहु गुरसिख नित सब करहु गुरपूरे, वाहु वाहु पावे नानक वाहु वाहु जो

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना

अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर साध जना कै संग भवजल बिखम तर सेवह सतगुर देव अगे ना मरहो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुभर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर।

तालोक महला पंजवां नदी तरंदड़ी मैंडा खोजना खुंबै मांझ मोहब्बत तेरी।

मत वन्य मित्र असा डड़े से हाँ टुने दी जाग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जा आपे होए दयाल ता भगत संग पर।

तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निकल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभूर।

आडल हब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदै ही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे विषम भये।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

तिस माए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए पीवत।

ना जाए। गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू, कमाम दिया सुख पुंच, त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी। कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता हुए ता काहे डरपीऐ। जिस मिल जपिया नाओ तिस जियो अर्पिया। आया चित निहाल साहिब बेशुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किस तिस कै वासना कोई बाहरा, सो भगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखै आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरा कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरा रंग रत्ती से जून ना जो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता कसम सोई सुख पाया नानक जिसह दयाल बुझाए हुक्म मित जिसह पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

पानी। लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी। कण बिन गाह के पाही गुजरी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै। सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई। गोविंद नाम मत बीसरै रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै। बेसवा जोन वल वल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै। सूकर जोन वल वल अवतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै। प्रेत जोन वल वल अवतरै अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै।

ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मान मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देहे टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहाव लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है तार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मरार देव गंधारी हर गुण गावे हम तिस बलिहारी देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मरारी रहाओ तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिल है जूठारी हम रह जिये होर मुख होर होत है हम कर्महीन कूड़ियारी हमरी मुदर नाम हर स्वामी हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी ज्यों भावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकती ज्यों बेसवा के करपूत जमत है तिस नाम परयो है त्रक्ती रहाव जिनका हृदय नाही हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ती ज्यों नुगुरा बहुबाता जाने ओह हर दरगाह है प्रस्ती जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिन्ना साध जना पग चकती नानक पतत पवित मिल संगत गुर सतगुर पातै शुक्ति छका एक देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है।

करत निमक ना बिसरोही मोरे ते बिसरत जाई हौ मरत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत इयान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहु गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

सेवा दर्शन दुख अवतारयो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारयो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारयो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारयो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

हा रहाउ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिने प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भागी ते पतवंते ते पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते।

प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटाव है मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राख हो राख नहारा करण कराम नहार समर्था।

दुख कनेरा सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अन ग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपाय लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहा उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

जाको उपजी छोड़ न कतुहु जाता रहाउ। बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जिनकीनो सौत बधाता सगल समूह लै उदरे नानक।

किया, संकट को घोर कटे खिन तर, नानक हर दर्श समाई है, देव गंधारी महला पंजवा, ठाकुर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल रहाव, दुए कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्म मन त्याया, हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया, वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार, कहो नानक जन को बल जाइए, जो सबना करे उदार।

काल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंदेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

जब कितवो तब तुहारी उन समाहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊ साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ।

जन तौत्तरे सकल दुराख्य देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तोहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाउ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

तरन परियो संत हारिए, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे, देव गंधारी महला पंजवा, हार जाप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ, साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो, चरण कमल बसिया रिध पीतर, तास ग्रास उचारियो, नानक ओट गही जगदीश्वर, पुनः पुनः बलिहारियो,

चार बरन मुक्त भये देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा।

रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई, रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गो हर की को द्वार, मिल संगत ताज अभमान,

साध पगां हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

अपनीति दुर्मत ते ना तरै रहाउ मद माया कै भयो बावरु हर जस नह उचरै कर पर पंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नावा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर खुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद करी को नह राख घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवा जगत मैं

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन शांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम,

0: माया राम। वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुरपूरै गत मित पाया राम। गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम।
1: अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए,
0: इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर

नड़िए, हर अमृत हर तरना राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिया।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटोह नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनका संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत कर पहला।

हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगाह सुबा पाईए जिनको बधाते।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एछ पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां घर दूजा।

प्रेम कणा हर की भगत मंग है, हर भगत पाई है प्रभ ते आई है, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भग है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जप है, हर नार सुहागने सब रंग माने, रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराने, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच्छ पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरन आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

0: तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। समरत कारण करना नानक चातर हर बूंद।

सांग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मनहू ना बीसर आनंद अन दिन सदा साचा।

चितवंत दर्शन सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा महला।

गुण गपालना जपह रसना फिर कदहो से देह आवे तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते जम मग गौन अकेली

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समर

कल्याण मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना, मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाईऐ।

पछताने, तार अनग्रहो अपना कर ली नाराम। पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले। महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले। रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना। नानक जिसनो हर

गुर कै शब्द मन भेजी है सदा वसै हर नाल नानक नाम तिना कौ मिले जिन हर वेखै नदर निहाल महला तीजा सिफत खजाना बख्श है जिस बख्शै सो खर्चै खाई सतगुर बिन हाथ ना आवई सब थके कर्म कमाई नानक मनमुख जगत धनहीन है अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी तू सब सदा सब तुद उपाया सबना विच तू वरतदा तू सबनी त्याया तिस दी तू भगत थाए पाए जो तुद मन पाया जो हर प्रभ भा

विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाण मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित तन

आए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी किसनों क्यों अंदेसा किसै गल्लै दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का किसनों त्याए दया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़ी है सलोक महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का नाउ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुबाए गुर प्रसाद कै

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातमा दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रह निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राह आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बह खावे आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली परावे आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे जिसनु कृपाल हुए हर आपे तिसनु हुक्म मनावे। श्लोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

जगत उपाया करते दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे।

आपे खंड वर भंड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे आपे भौजल आप है बोहिथा आपे खेवट आप तरे आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझै सरे। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाईए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हउमै ममता जाए उत्तम पदवी पाईए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुख दाता।

पर बुझे सब आपे एक थै आपे करे आणी इकना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाणी जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई से जन सच्ची दरगह जाणी। सलोक मरदाना पहला कल कलवाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मोहे भरी पीलावा अहंकार मजलस कूड़े लभ की पी पी होए खुआर करनी लाहन सत गुड़ सच सरा कर सार गुण मंडे कर सील के हो शर्म मास आहार गुरमुख पाइय नानका खादे जाहे विकार। मरदाना पहला काया लाहने आप मद मजलस तृष्णा धात मनसा कटोरी कूड़ भरी

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किस की धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बेबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आपे

हरस्यो प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुगदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

नानक सो प्रभ सिमरिय तिस देही कौ पाल पौड़ी आपे अठसठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए हे नाम आप दयाल हुए पहु खंडन आप करै सब दान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द ऐस्यो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरै अहनस जलत बिहाई जो तिस भावै सो

गुर पर साथी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोय नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए पौड़ी जां आप कृपाल होए हर स्वामी तां अपना नाम हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर भावै अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय कीमत किनै ना पाईया कितै ना लया जाय गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय नानक आप अमेव है गुर किरपा ते रहिया समाय आपे मिलिया मिल रहिया

नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब घटे अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूप महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार।

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराहा ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिया मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवे शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहया समाय, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग, बढ़ा

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्म जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

दिन तेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पिर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पिर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर गुर पुछ।

आप खाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सोवेला जित प्रभ मेला रहाव लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा कट कट वस है जान है थोड़ा

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महल।

प्रभ दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जाल काल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरे ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर किरपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना।

अंतर भूख न उतरे अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम प्रम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिन लाता, हों क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण को रख लेता, हों भई उडीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगै हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली।

मनसा सब पूरे, मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली, फिर सर्व रहया परपूरे, जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कै लग पैरी, वडहंस महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सच्ची बाणी सच धुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाहना, धन पन वड भाग हमारा।

सेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जस है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वञावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण, सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड मुग्ध

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी, हर लीजै शरीर जमाए राम। अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा। हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई।

सत्य शब्द लिव लाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाए दूजे पाए परम भगुती मन मुख मोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरिया अंतर तेरे निदान है बाहर वस्त ना पाल जो भावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई बिन नावे को छूटै नाही सब बाधी जमकाल नानक अंतर तेरे निदान है तू बाहर वस्त ना पाल मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौ निद पाई मनमुख माया मोह व्यापे दुख संतापे दूजे पत गुआई हौमै मार सच शब्द समाणी सच रत्ते अधिकाई नानक मानस जन्म दलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वड भागी राम जो मन मार है अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत निश्चल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम बखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ बन गई है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मह गुणी समाई राम गुण मह गुणी समाए जिसे आप बुझाए लाहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम अधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनों एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजी।

वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काड पीयै पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागै रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊ मैं मैल परीजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मोए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे पंडा।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है दूजा।

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावे, मेरा सतगुर पूरा राम, हौ मन तन देवा, तिस काट शरीरा राम, हौ मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए, मेरे मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम तूरा।

तिनकै जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारी।

जो हर प्रभु भावे सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर न कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गुआया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभु कृपा सारी ए सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नाम देवै मेरा अंत सखाई राम हर नाम मेरा अंत सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तिन निफल जन्म सब बिरथा गुआया राम निफल जन्म तिन बिरथा गुआया ते साकत मोए मर चूरे कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर्श

सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाद हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो कृपा।

आया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम पाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नवरंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन भुज चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ वडभागी लंघे गुर खेवट शब्द तराय अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखाणिया हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगी।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगी।

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती। कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम। मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा। हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावै रंग महली। हर रंग माणे रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाय। हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी। देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग वड़ा हंस।

यहा पूर्व कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदै लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथै तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाना आगै सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गर्व कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाइय नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म न

हारेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा कर सचड़ै सेवी।

अन दिन रस भोग सा धन महल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म बधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतियां गुण सार है अपने कंत संभाल है ना कदे लगे विजोगो सचड़ा पिर सलाही है सब किस करना जोगो सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लए मलाई सा धन प्रिय कै रंग रत्ती विचों आप गवाई विचों आप गवाई फिर काल ना खाई गुरमुख एको जाता कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राती जोब नमाती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संता जाए आप छोड़ सेवा करी फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया पर पूरे वेख हदूरे

प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहेली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

झूठे, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवे अवगुण यारी झूठी, फिर जग जीवन किसनो रोइए, रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो, आवन जान संसारी सो फिर सच्चा सद ही साचा है, ना ओह मरे ना जाए, भूली फिरे धन इणिया, रंड बैठी दूजे पहाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आप कटे तन सीजे, जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जम काल ना सूजे, माया जग लूजे, लभ लोभ चेत लाए।

पिर नाले गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले फिर अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे इहो तन रुलै रलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा तन मिले मलाई तेरे अंतर सदा संभाले

सच्चै नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहै दिन राती विचों हों मैं जाए जिन्नी पुरखी हर नाम चित लाया तिनकै हों लागू पाए काया कंचन ता थीऐ जां सतगुर लए मिलाए सो सच्चा सच सलाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुँह देसन आगै जाए क्या देन मुँह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाए तिस जेवड़े अवर ना सूजई किस आगै कहिए जाए सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चै सर नाए सच्चै सहज सुभाए नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाए अन दिन भगत करहै रंग राते नानक सच समाए जिन्नी सचड़ा सच ते आया हों तिनकै लागू पाए वडहंस की वा

काम क्रोध विनाश सतगुरु का भव छोड़िया मन हट काम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया सलोक महला तीजा सतगुर मिलिया भुख गई भेखी भुख ना जाए दुख लगे घर घर फिरे अगे दूनी मिले सजाए अंदर सहज ना आयु सहजी ही लै खाए मन हट जिसते मंगना लैना दुख मनाए इस भेख थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाए शब्द रत्ते तिना सोजी पई दूजे भरम भुलाए पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योतिष भावै।

ना हो गई। अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय। मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय। सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय। घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय। पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गुआय। नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी। तित जाए बहु सत संगति, जित हर का हर नाम बिलोई। सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोई। नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई। तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोई। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करहे विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे भाई प्यार मन

आए दूजे कर्म कमाए नानक मनमुख जीवदिया मोए हर विसरिया दुख पाए पौड़ी जिस अंतर हिरदा शुद्ध है तिस जन को सब नमस्कारी जिस अंदर नाम निदान है तिस जन को हौ बलिहारी जिस अंदर बुद्ध विवेक है हर नाम मरारी सो सतगुर सपना का मित है सब तिसह प्यारी सब आत्म राम पसारिया गुर बुद्ध बिचारी। सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जी के बंधना विच हो मैं कर्म कमाई

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

गुर की गल मन्नी, जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा, मनमुख कायर रूप है बिन नावै लक नाही, अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही, ता बदे दुख सहाय। महला तीजा, गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे, अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा, सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव। ओस नो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा, ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हूं मैं शब्द जलाए, कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसै मन आए। अंतर शांत मन सुख होए, सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर्म

सेवक सेवा करी, हर सच्चे के गुण गाई, नानक वेख विगस्या, हर सच्चे की वडियाई पौड़ी, जिनकै हर नाम वस्या सद हिरदय, हर नामो तिनको रखन हारा, हर नाम पिता हर नामो माता, हर नाम सखाई मित्र हमारा, हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलक, हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। श्लोक महला तीजा, जिन कौ सतगुर भेटिया, ते हर कीर्त सदा कमाहे, चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया, सच्चै शब्द समाहे, कुल उधार है अपना, मोख पदवी आपे पाहे, पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया, जो गुर चरणी जन पाहे, जन नानक हर का दास है, कर कृपा हर लाज रखाए। महला तीजा, हौ मैं अंदर खड़क है, खड़के खड़क विहाय, हौ मैं वड्डा रोग है, मर जमे आवे जाय, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आय, नानक गुर प्रसादी उभरी, हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी, हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर, अविनाशी पुरख विधाता, हर नाम हम सिरेव है, हर नाम हम पूज्य है, हर नामे ही मन राता, हर नामे जेवड कोई अवरना सूजे, हर नामो अंत छडाता, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, तन तन गुरु का पिता माता।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास। सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास।

धुर पूर्व लिखे आस पौड़ी, हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार, जित खाया हमको तृप्त पई, हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी सरद गई, हर नाम हमारा वणज

हर का नाम गुरमुख किने विरले त्याया जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखित पई। श्लोक महला तीजा जगत अज्ञानी अंध है दूजे भाई कर्म कमाए दूजे भाई जेते कर्म करे दुख लगे तन धाए गुर प्रसादी सुख उपजे जा गुर का शब्द कमाए सच्ची बाणी कर्म करे अन दिन नाम त्याए नानक जित आपे लाए तित लगे पहना किसु ना जाए। महला तीजा हम घर नाम खजाना सदा है भगत भरे भंडारा सतगुरु दाता जी का सद जीवै देवन हारा अन दिन कीर्तन सदा करह गुर कै शब्द अपारा शब्द गुरु का सद उच्च रह जुग जुग वरतावन हारा इहो मनुआ सदा सुख वसै सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हर रतन है मुक्त करावन हारा नानक जिसनो नदर करे सो पाए सो होवै दर सचियारा पौड़ी तन तन सो गुर सिख कही है जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुर सिख कही है जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुर सिख कही है जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया तन तन सो गुर सिख कही है जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी जो गुर कै पाणै गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा मन हथ किने ना पायो सब थके कर्म कमाए मन हथ भेख कर भरम दे

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिने विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हो मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार महला तीजा सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार।

0: मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके,
0: मन होए निकेंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

धरती उपर कोट गाड़ कीती गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जान है सूलिया काहे मिठा खाहे नानक औगण जे तड़े तेते गली जंजीर जे गुण होन ता कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कड होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागत देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहिया विरला बूझे कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन सोठ महला पहला चौतुके।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवे मरे बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया

देह इक्कत रूप फिर परछन्न कोय ना किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे कीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किस दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै सूठ महला पहला हों पापी पतत परम पाखंडी तू

फल है। साच्या शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते, अहनस प्रभाते, हर रसना जप मान रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, अहनस नाम रते से सूचे, मार जन्मे से काचे, अवर ना दिसै किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई, सोरठ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजोनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचा शब्द नीशान रहाओ, ना तिस मात पिता सुत बंदप, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली ज्योत तुम्हारी, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, कट कट ज्योत सबाई।

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै।

सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जीओ। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर लाभ हो काही जीओ। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जीओ। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो, सच गुर बचनी फल पाही जीओ। ज्यों पावै त्यों राखो हो हर जीओ, जन नानक शब्द सलाही जीओ। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम वसार अन रस लोभानी, फिर पछताहे अभागा रहाउ। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पुगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया,

जियो, देख अदृष्ट रहो विस्मादि, दुख बिसरै सुख होई जियो, पीवो अपेओ परम सुख पाइय, निज करवासा होई जियो, जन्म मरण भव भंजन गाइय।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो घर अपने।

रहाव, जागत रहे तिनी प्रभ पाया, शब्दे हम मैं मारी, गिरही मह सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत बिचारी, सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राखिया उर धारी, एहो मनुआ दह दिस धामदा, दूजै भाई खुआया, मनमुख मुगद हर नाम।

कर कर विगुटे केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख होवै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती राम नाम सच लाहा नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा सूरठ महला तीजा दासन दास होवै तां हर पाई विचों आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है आन दिन

एक रंगी हर सियो रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपने दासा नू कृपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यो गुर सेव्या चित लागा साचा शब्द सच्ची सच बाणी सो जन अन दिन जागा महा गंभीर सदा सुखदाता किसका अंत ना पाया पूरे गुरु की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा वो पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रत्ता एक रंगी शब्द सवारन हारा सोठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द पर

रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार ज्वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल हुआ हर वस्या मन आई शब्द गुरुदाता जित मन राता हर सिउ रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्नी बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्द गोबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई।

आप राखै जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे। सदा लिभै तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावै। ना बूझै विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया। हरनाक्ष नखै बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावै। हर जियो लए उबारी, आपस कहो

सो आप पछाणे हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाईए। एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाईए। नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाईए। सोठ महला तीजा चौथुके,

प्रणाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाउ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रव्या सब ठाई हृदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संजम सब गुरते होवे हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाई सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाई मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाउ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईऐ पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

केरै मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाई, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, घरै अंदर सच पाई सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ, मनसा मार दुबदा सहज सुमानी पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा, शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से, सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाई।

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

आप लखावे सोए, आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड अवर ना कोई, सब घट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए, नानक गुप्त वरतदा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विकसदा प्यारा, कर चूज वेख प्रभ आपे, आपे वण तिण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे रहाओ, आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपे, आपे जाल बताएं दा प्यारा, सब जग मछली हर आपे,

प्यारा तुन आप बजाए आपै आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापै आपे सतगुर आ

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया।

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाउ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सुपाई मनमुख भूखे दह दिस डोलह बिन नावे दुख पाई जन्म मरै फिर जोनी आवै दरगह मिलै सजाई कृपा करह ता हर गुण गावह हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल भये है तृष्णा शब्द बुझाई सोरठ महला चौथा पंच पदा अचार चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाई मेरे गोविंद अपने जन को देह वड़े आई गुरमत राम नाम परगास्त हो।

रहाउ। कूट पराद मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की आही। बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही। सोठ महला पंजवा कर पहला, जा कै हिरदय वसया तू करते, ताकी तै आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी। जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी। दर्शन

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हिरदय त्याईए सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ वाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो हो।

योगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइए सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयों दर्शन हर जियो पाइय भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेहे प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु निवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूर्ण सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवां हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणी।

साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना, तुम करहो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

अब कहां करे तू, जो फाट्यो सगलो लिखा, महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर बिद जाने, ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

आंद मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण हो कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भये हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा।

अब हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोस्त ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल भय लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया।

सतगुरु नाम निधान दृढ़ाय चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिया अविनासी तां को बिघन ना को लागे जो सतगुर अपने राखी चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखी कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच पुजाई नानक दास तां कै बलिहारे जिन पूर्ण पैज रखाई सूरत महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देव नहार ना जाने जियो पिंड साज जिन रचिया बाले अपनो कर माने मन मूड़े देख रहे प्रभ स्वामी जो किछ कर है सोई सोई जाने रह न कछु शानी रहाव जिहवा स्वाद लोभ मद मातु उपजे अनक बेकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हऊ मैं बंधन के पारा देह कवाड़ अनक पड़दे मह पर दारा संग फाके चित्तर गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़ता तेरा ढाके दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट ना काई काड लेहो संसार सागर बह नानक प्रभ सरनाई सूरत महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप आनंद करहो नित प्राणी हर साचा सिमरहो पाई साध संग सदा सुख पाई है।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोरठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहयो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहया समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्यावो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न ना अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोरठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडावो एह पीतर ते इनको डारो आपन निकट बलावो अपनी बिद आप जनाव हो।

गुरपूरा भेटियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरत महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होए काला रहाउ सार संभालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़े दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरत महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर।

प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाव पई कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानु नानक नाही सुमार चौठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाउ अंतर बाहर थान तनंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वडे अवन ना कोई चौठ महला पंजवा सूख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हारै राखियो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरनाई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाउ कर्म है सूख

जस गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाणा कीमत कहण ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

सो ही पावों अपने खसम भरोसा। कहो नानक गुरु पूरा भेट्यो मिट्यो सगल अमेसा। चौठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना। सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी। मन इच्छे फल पाया मेरा गुरु पूरा सुखदाता। करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाओ। आनंद बनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक पये दयाला। जय जयकार पये जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारो नानक पात्रा की परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया। उमराव हो आगे तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

मनै सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतराई मिल नानक आप गुआई चौठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो हो।

पूरे गुर कृपा तारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया

पार ब्रह्म निभाई पूरी, काई बात न रही आयूरी। गुर चरण लाए निस्तारी, हर हर नाम समारी। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यों पाला रहाओ, वडभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मटाया,

पर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म वित्तो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है मन बाशत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

इस सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांथे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौ जल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

तब अपना अचरज तुम्हें वडाई। तार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी, पात मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संतां तूरी। चौठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारी, प्रभ सबे काज सवारी, हरे अपनी किरपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल

कुशल खेम प्रभ धारी, सही सलामत सब थोक उबारी, गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, चोठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा

आओ प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास बखानी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडे आई।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ। परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

दाता शुभ चितवन दास तुम्हारी राखह पैज दास अपने की कारज आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल जिन धारी

ठाक रहाय, विघ्न गए हर नाय। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया।

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आज सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव रहे।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै किसकी गत होवै उधरह सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोठ महला पंजवा गुरपूरै पूरी कीनी बख्शे अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाम सगले सुखी वसाया हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्ही जाती रहाउ गुरबाणी गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोच

सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया, रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी।

को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावे।

मालिक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रव सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रव सरनाए जिन सगले

दर्शन भेट होते आनंदा, दुख गया हर गाय, हर रस पीवो हो पाई, नाम जप हो नामो अराध हो, गुरपुरे की सरनाई रहा, तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन पाई,

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी

कर साध संगत सिमर माधो होए पतत पनीत काल बयाल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

धन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोठ महला नवा मन रे कौन कमात तै लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सोठ महला नवा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जेहे सिमरत गनकासी उदरी ता को जस उरतारो रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कह सिमर, भव सागर कहो तरई। कल मैं एक नाम कृपा

पूत पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निरतन देखियो नरको संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इन सिंह ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागियो जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

अर्ख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जग ते रह नरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी नानक ली।

बहुत हित जासियों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जासियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो। मड़े मसान ना जाए कृष्णा राच ना पर घर जावा।

ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम बसे सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख देव वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहना कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नाम मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगाम जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिय भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुरु।

पी पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पथ खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोह रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाई है भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़ है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई गुर

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगत।

मन वस्या सब काज सवारन हारा उन्ना की रीस करे सो विगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाने बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूट है गुर सरनाई।

भाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे भाई ऊंचा अग में अपार जी जंत प्रित पाल दा भाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए भाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए भाई ब्रह्म पौ हो ऐ नास मिल संत सभा मन मांजिए भाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता भाई कमल हो ऐ परगास गुर बचनी सुख उपजै भाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए भाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया भाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ हो भाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश तिस भावै ता मेल लय भाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है भाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ भाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया भाई ऐनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा भाई।

जिस पर तीत ना आवई पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हऊ तिसकै बल जाओ। वो निर्गुण आरे पाल दा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा भेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी। तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी। माया मोह वधाया जिसनो कीतो कर्म आप प्यारी। इस पूरा गुरु मलाया सो अरादे सास सास।

अरपाती रहो नगन फिरे हो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराई

भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडो होता खट कर्मा रत रहता। हाँ हाँ करत बंदन मह परया

फिर फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा, सेज सोनी चंदन चोआ नरक कोर।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

ता सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा शिंगारी नाउ मन कदे

फुरमाइए कौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतेओ से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास, महला तीजा से सैन से सजना, जे गुरमुख मिल है सुपाय, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाय, दूजे पाए लगे सजन ना आखी है, जे अवमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी, कार्ज ना सकह सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार पौड़ी, तुद आपे जगत अपाए कै, आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हों मैं लेखा मंगिया, फिर आवे जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रमदा परम पलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया

बिरसा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुर पूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना पूरी दे जियो वन्ये चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाएदा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है।

आए। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना, हो तिन बलिहार जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, हट हट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमें परम पलाए। गुर प्रसादी भव पया, वडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ, हमें शब्द जलाए। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले ना पाया, नानक सुख समाए। पौड़ी।

नानक नगरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया ते दरगाह पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम भउ गया सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पइयो हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ती है पाइय मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारिया हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया जिन्नी सुन मन्या हर नाम तिना हों वारिया गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया हों बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया सलोक महला तीजा विण नाम है सब परम दे नित जग तोता सहसार मनमुख कर्म कमावनी हों मैं अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन्न देने उस्तत होवे मनमुख भरमे सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जागह सवह सुपाए नानक नाम रतिया बल जाऊ पौड़ी से हर नाम त्यावह जो हर रत्या हर एक त्यावह एक इको हर सत्या हर इको वरतै एक इको उत्पतिया जो हर नाम त्यावह तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाए ऋण जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए नानक शब्द पछाणिए।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो हन दिन जलत विहाय कूक पूकार ना चुकई ना संसार विचों जाय नानक नाम विहूनिया मोहे काल उठ जाय पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई।

आई अंतर अज्ञान अंधेर है शुद्ध ना काई पाए मन हाथ सहज ना बीजेओ भुखा के अगे खाए नाम निदान वसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करे महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना भाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुरमिता पुत्ता पाइया गुर सतगुर

पिछै सुख नहीं, मर जम्मै वार वार, तृष्णा कदे ना बुझै, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम त्याईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चित एक अरादिया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की से

हर हर श्रृंगार बनावो हर जन, हर कापड़ पहरो खिमका। ऐसा श्रृंगार मेरे प्रभ पावे, हर लागे प्यारा प्रेमका। हर हर नाम बोलो दिन राती, सब किल बिख काटे एक पलका। हर हर दयाल हो ऐ जिस ऊपर, सो गुरमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। खनली धोती उजली ना होवे, जे सौ धोवन पाह। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखध खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

री जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाय। सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर नाय उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार न कमाय। जगत जलंदा डेठ मैं हम मैं दूजे पाय। नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याय।

आई हर सेती मन राव रहया सच्चे रहे आसमाई नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे शिंगार फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हरे अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै किस बिन रहन ना जाई सतगुर मिले ता पूरा पाई हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिन सप्रभात।

यह नाम उपजे किसना भुख सब जाय, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा, सतगुरु पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया, उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया, उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ, क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया, जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे। वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की, जैसा कोई करे तैसा कोई पावे।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रप, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूतपूर्व।

हेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदार है जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाउ बाजीगर डंक बजाई।

जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहे आसमाई, गुर किंचत कृपा कीनी, सब

राम न कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाउ तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया।

तह अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह दीप

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया।

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिक राजे इंद्र समसर ग्रह आसन।

भय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं, कहियत ज्ञान अचरियत अनकश, समझना पर अपर माया, कह रवदास उदास दास मत, पर हर कोप करहो जी दया, सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनिध कर तल ताके, हर हर हरना जपह रसना, अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ, नाना ख्यान प्राण बेद बिद, चौतीस अखर माही, व्यास विचार कहो परमार, राम नाम सरनाही, सहज समाद उपाद रहत फुन, बड़े भाग लिव लागी, कह रवदास प्रगास हृदय धर, जन्म मरण पै भागी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भये है चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है, तुम स्यों तोर कमन स्यों जो रह रहा, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तो।

राखै जा सोई, जह देखा तह रहया समाई, तुद बिन दूजी नाई जाई, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चल।

नहीं कोई। तना श्री महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागे फिर का ना खाई रहाओ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिखिया।

काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला का तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का ठप, था नष्ट जग प्रिष्ट होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामी तह नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए, भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाज

एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध हिव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस कै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखुट नान खुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए गुर कृपा ते हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन परगासिया।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

सो निर्मल होए। निर्मल नाम हम मल तोए, साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए, अन दिन दाजह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले। जी जंत जिनह प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए। हर कै नाम रते लिव लाए, गुर सेवा ते हर नाम धन पावे। अंतर परगास हर नाम त्यावे, रहाव एहो हर रंग गूढ़ा धन पिर होए। शांत शिंगार रावे प्रभ सोए, हउमै विच प्रभ कोई ना पाए। मूलों भुला जन्म गवा।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज सुन।

मूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए।

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

गुरमुख करनी कार्य कमावे, तां इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैं गिल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरे ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवार।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर पेते पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत।

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए, तना श्री महला ती।

लाय गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लय मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है जा।

कृपण को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उड़तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर

ज्ञान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारी गत में तो कह ना सकह प्रभ, हम क्यों कर मिलह अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर

हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाती भूख पुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

सोई फल मानुहु हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवे हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बंदुहु मत जानो आज के काली हर के संत जपहु हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर हुए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलुहु हम साध जना पगराली तनासरी महा।

करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बेन रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुट काकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारी जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

काम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी तब हर सिंह प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पये है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर भौजल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तेना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल तरना।

प्यारी, सब तुझे त्यावह मेरे साह, ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवा, घर पहला चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वचल निरंकारी, कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकिया तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

मन बासन दे कर गढ़हा गाडी रहाव। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर,

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई प्राप्त वस्ते।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

केले वेख दुख भागे गुरु ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै

सदा सदा तुध त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई। अंड रूप रवेओ सब मधे, जत कत पेखों जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाई, मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण। भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे। क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो। साध प्रसाद हर हर हर गा।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवां तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु, हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावहु, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले।

निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी महा।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा।

कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाइए साध संगत दिन सजाए अंधार चरण कमल आधार।

तहाउ स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाय पाय सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह हर ना।

करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाउ पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किनै ना दुत्तर भाखे

अराद हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन खापियो हर जापना निमुख जापियो हरफ द्रब देख कश संग नाही चलना जा को रे कर्म भला तिने ओट गही संत पला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर मैं बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाली। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोबिंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव नित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई, संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई। संत अनुग्रह पए मन निर्मल नानक हर गुण गाय। तना श्री महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताकै जा का सतगुर पूरा।

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, तां का युग मह धर्मा।

पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवां नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परो रवाल रास।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्ब सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहूं जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को भई हमारी गात रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरे जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोय ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला होआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा करता रहो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवां तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवां गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

आनंद हर देवनहारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाव। पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाउ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाउ। पर निंदा उस्तत नह जाकै, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परों रहाउ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरू। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाउ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रि भवन जोत।

एक जात सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साके निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई, गुरमुख भगत सहज घर पाईए, बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ, सो गुर करो जे साच दरडावे, कथ कथावे शब्द मलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन मह

तुद पावै त्यो राखर जाए, नानक सहज पाए गुण गाए। अलासरी महला पंजवां घर छेवां अष्टपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो जो जूनी आयो तेह तेह उरजायो, मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओट साध। राखो दे कर हाथ कर कृपा मिलो हर राया, अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई। करो सेवा गुर लागो चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई। रहाओ अनक अपाव करो माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही विहाव।

लावे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाइए रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माई गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल

आप पूरा नामणु गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बीणी ता संगम सत सते आराद एकंकार साचा नित दे चढ़ै सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चै गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर है सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह लिब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जा।

सत संगत मिला वडभाग ता हर रस आवे जीओ दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हो मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

दातार सर्व दुख पंजनो जीयो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीचे अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोलै जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोलै जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाऊ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कमला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजै काल एहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिध कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूजै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

सरना जो जन भाव भगत कश जानै ताको अचरज काहू ज्यों जल जल मह पैस ना निकसै त्यों ढुर मिलो जलाहू हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा रमैये कहा निहोरा रहाऊ कहत कबीर सुनहोरे लोई।

हमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाओ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गनका पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाद अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रेण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा से करत ठगा।

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या परमोह, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बाल।

ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यो मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यो मेरे मन रामैया बारक को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल गुण चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताते हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हरका बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीमो, चिर पयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो, चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पा

आई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटारी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती राम।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाउ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुर हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी

गुर साधु मिल साधु कपट खला न रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ तन तन बड़ भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संचय है लाए ज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह है सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करहु गुर मेलहु,

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमा हाराम हर हर नाम दयाल त्याह हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु मिल सत्संग।

गुर मिले हर ओ महाराम कर कीरत जस अगम अथाह खिन खिन राम नाम गावाह मोको तार कृपा मिलिय गुरदाती हर नानक भगत।

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ माहा राम, नाम रतन हर नाम।

आपे सतगुर संबंध मथाहा, आपे मत मत तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपहु हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

उज्जल संग संतन कह पाईए जैत श्री महला पंजवां कर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सब महियो वर्ण ना दिसै जिहन ना लखिए सुहागन सांत बुझहियो सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मने गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुरु प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाउ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भवनिद पार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत श्री महला पंजवां जा कहो पए गोविंद सहाई सूख सहज अना

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी।

पूर या रस मह मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चात्रक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर

आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत।

को त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

दह दिस को उठ ताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया ना हिन गुण ना हिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो शरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रयह बे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन देहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पिर के हिया यार वे पिर आपन पाणा किसनीशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

महामंगल रहस थिया, फिर दयाल साधना वरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सत संगिया, आसा मनसा सगल पूरी, त्रय अंक अंक मलाई, बिनवंत नानक सुख सखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई, जय श्री महा।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एहे करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथिया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक भरम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही, जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिनस बार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर में, नानक हर रंग।

अथापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मजार उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गबार हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार बिकम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार।

शरणं सर्वत्र आशा पूर्ण है, खंडनं काल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग माण है जिस संग ऐस्यो लाई है नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो, नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटंब जतन करनं, माया अनेक उदम है,

ना शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

त्रोहो पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई

लोका बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाऊ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

एव सदा हजूरीय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वनं सनंत शब्द अमृत है। नानक तिन सत बलिहारं जिन्ना ध्यान

जित मलंदड़ो महापीरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक।

दरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपौ भये मन टूट न आवै मूल संचिया नाम धन संत जना स्यो संग पाईए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्यो पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया ना।

दयाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल सम्राट गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अपदसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया।

लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा वे मन मुख मूड अज्ञानी कहिय है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्त

बाद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसियो पेख रंग कुसुंभ को परग्रह जोहन जायो करन कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पांच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछ राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सुवारी।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया साध संगत कै पाछे परे ओ जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो सब ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर।

पंजवां सतगुरे आयो सरन तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न

पावह सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूटह पवजल जगत तरायण खोजत खोजत।

ठाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे

दुख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

या टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमुख।

सब किस किस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहू ना होए रहाव, हौं टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एहे बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथे, एहे बिद नानक हर नैन अलोई, टोडी महला पंजवां गर्भ गिहिलड़ो मूडड़ो ही ओरे।

आयो रे। महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो, नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग। एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखियाते।

गहियो मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए, अनद चिता हर खे पतीन। तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक,

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तोसा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निम कही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे सम

तारी माने आस रहाउ। सिमरौ नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण तास। शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता। अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता। रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी। कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म।

शल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अवनासी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काढ लियो जाने अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक शरण गही।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै वेद बखाने मूर्ख नाम देवरा मह जाने। कौन को कलंक रहे हो।

पुरोहित ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाउ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी वर्त रह काहे को तीर्थ जाई भणत नाम देओ सो कृत समत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछै रहाउ कुंभार के घर हांडी आछै राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आचै।

कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख होमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाउ जो किछ

सो हर नाम विहाजी, सो साहु सच्चा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याय सुखदाता, जाका अंत न पारा वारा रहाउ, अगन कुंट मह उर्द लिव लागा, हर राख उदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन, हर अंत शगावन हारा, जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर, तिस जन को करहो नमस्कारा।

हर नाम नित त्याई, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आई रहाउ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाई। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाई। तू बेअंत सर्व कल पूरा, किसकी

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईचनी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

जो किछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए, जा कै प्रेम पदार्थ पाइए, तौ चरणी चेत लाइए, सहु कह सो कीजे, तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए, एव कह सुहागनी भैणे, इन्हीं बातें सहु पाइए।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होई जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

करतीजा करते कुदरते मुसताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ हिन माहे थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पावंदे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्निया तिन

उस्तत है जो हर प्रभ भावै जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावै जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया वे आप छुटे परवार सिउ सब जगत छडाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेवंदी से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया हर दरगाह पैनाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम ते आएंदे

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

नानक कम ना आवई जित तन नाही सच्चा नाम। सूही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडै जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है। गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर समसर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नहाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप भला।

घट ही पीतर सो सहो तोली इन विद चेतर हावा आपे कंडा तोलत राजी आपे टोलन हारा आपे देखै आपे बूझै आपे है वणजारा अंधला नीच जात परदेसी।

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा सुध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

किसन उतरिया घर जिस जाय, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम भया,

मुख अठसठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा, तिनी अंतर हर अराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाउ तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसते पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास, मैं होर थाऊ नाही जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे। मन हर जाप भ्रम।

जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग भये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हऊ मैं रोग गए रहाऊ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हऊ मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हऊ मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

खुद श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै, इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै, हर की वडियाई हो आख ना साका।

मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवा, कीता लोड़ है सो प्रभ होई, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया परपूर।

मैं जाइया जिसनो लाए ले सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे तायाण है रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभ सदा त्याय सूही महला पंजवां तन सुहागन जो प्रभु।

पंजवां ग्रहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमकियो हियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरियो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, हिन रहन ना पावू बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह पिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

आता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभ बिनो सनीजै कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाउ दूजा सूही महला पंजवां बुरे काम को ऊठ खलोया।

पंजवा जीवत मरै बुझै प्रभ सोई तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरियै मिल साधु हर नाम उच्चरियै रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किछ करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हिरदै वसै मरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करनै हार सगल सिष्ट कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाउ भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करहो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत सतगुरु की रेन वड भागी पावे नानक गुरु को सद बल जावे सूही महला पंजवा गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा काय

किल बिख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतरवाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंधप भाई जत कत पेखो हर संग सहाई जत मेरी पत मेरी धन हर नाम सूख सहज आनंद विश्राम रहाव पार ब्रह्म जप पहर सलाह कोट आवद तिस बेदत नाही हर चरण सरन गर कोट हमारे काल कंटक जम तिस ना बदारे नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मरारी सूही महला पंजवां गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद बनोद मंगल।

धूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभु चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा।

जित जित लाया तित तित को लागै, अगमे अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बुलाया तेरा। सुई महला पंजवां, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाव, प्रभ अविनाशी रहन दिन गाऊ, जीवत मरत निश्चल पावह थाउ, सो साहु सेव जित तोट ना आवे, खात खर्चत सुख आनंद विहावे, जग

सुख माना, नानक दीवन हार सुजाना, सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंद है नित पारच, माधवे पाज दिन नित रहनी, जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाव, करत विकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं धारत, परन पोखन संग औद बेहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता

दास हर सेती राते, राम रसायण अन बिन माते, बाहां पकर प्रभ आपे काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी, नानक दास हर सरन द्वारी, सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निश्चल घर पाया, सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु त्याए हर चरण मन चीने, ताते करता असथर कीने रहाउ, गुण गावत अचुत अबनासी, ताते काटी जम की पासी,

अल्लाह पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना

जो सगल कौ फिर लपटाओ करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

सरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया।

तेरा पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम हौं सो थान पालने आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाऊ वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है, संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कान में है मैल प्रिये। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे, उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ। कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवै। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवै, तिन हर सिउ आण मिलावै। माया मोह परम पहु काटै, संत सरण जो आवै। जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक बरनऊ,

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म करया।

चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागै।

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म ना।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

अब निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया भणत नानक सहो है पी होसी जय पावै प्यारा तैर वेसी सूही महला पहला कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंब का थोड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मित्रा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हम मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखह आप देह सो पाई है तू देखह थाप पथाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कित्ते कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कब महाई है गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है ज्यो राखह कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहूं साहिब की टेक ना मोह है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन

निवाजिया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख वे।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मन लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा दुरम

अलख न लख आ जाई मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर विचारा गुरमुख होए सो काया खोजे होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसे गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सतगुरे आप दिखाया।

है गुरमुख निब है नाल ए मन मूलों भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच त्याय हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नानक खुटई हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व हो लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोई गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होय सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिया शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुखे को बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया।

प्यारा हौं तिस पह आप बचाई दर्शन हर देखन कह ताई कृपा करह ता सतगुर मेलह हर हर नाम त्याई रहाउ जे सुख दे ता तुझह अरादी दुख पी तुझह त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि।

सुतियां गुर सलाहिया उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआ पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कित उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। अका

सतगुर मीत मलाया, मैं सदा सदा तेरा तान, सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब मैं रहया समाय, राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या, गुरपूरे साबास, राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उर्ज रहयो बिख्या कै संगा, मनह व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाईए पूर्ण परमेश्वर रहाउ, मोह मगन में रहया व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

दरबारा आस अंधे सा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे भयो कृपाल साध संग पाया नानक तृपते।

मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल शरणाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाई है। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्ब मैं तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी।

मन्यो हो आप बदानिया एक पूरी नगर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किले विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे होए नमाणी तै पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम

मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्निया, सुख न पायन मूल नाम विशुन्निया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बिचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाही अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया, खोज है कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे, विसरना ही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो, राग सूही महला पहला कुचजी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कुचजी अम्मावन डोसड़े, हौ क्यों सहो रावण जाऊं जियो, एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो, जिन्नी सखी सहो रावया ते अंबी छावड़ी एह जियो, से गुण मांजना आमनी हौ कै जी दोस त्रेऊ जियो, क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाऊं जियो, इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान तेरे जाऊं जियो, सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो, से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा अस जियो, हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो, अंबर कुंजा कुरनिया बग बिहठे आए जियो, सा तन चली सोहरे क्या मुंह देसी अगे जाए जियो, सुती सुती झाल किया भुली वाकड़ी आस जियो, तै सह नालो मुतीस दुखा कू त्रियास जियो, तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो, सब राती सुहागनी मैं दुहागन का

पास जियो, तुद अंतर हो सुख वसा, तू अंतर सा बास जियो, भाण तखत वडाइया, भाण भीख उदास जियो, भाण थल सिर सर्व है, कमल फुले आकाश जियो, भाण भवजल लंघी है, भाण मंझ परिहास जियो।

चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

सुहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवनहारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

ता गुण रवै मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच पावै साच की मत क्यों टलै इशनान दान सुग्यान मज्जन।

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज हो हर जन की, जो हर हर नाम त्याई।

सतगुर सेव धन बालणीए हर वर पाव है सोई राम सदा होवे है सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझे कोई हों मैं मार पछाणिया करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर एको जानिया गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुभा हुई नानक कामन पिर रावे अपना रव रहे आ प्रभ सोई गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मलाए राम हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरतै सब थाई सच्चा शिंगार करे दिन राती कामन सच समाई हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रब रहिया सब थाई राम, प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानक।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आए, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी, तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाई, नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर

सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन कर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई सा धन कंत प्यारी सत संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए अनदिन सहजे माती राम गुरमती मन आनंद भया तित तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना विचो हो आप गुआए गुरमत पाया सहज मलाया अपने प्रीतम राती

हर मन तनु गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमा।

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यो रलिया माणी सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना।

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

तेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अन दिन सुख माने नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो संत जना कर मेल गुरबाणी गवाइया बलराम जियो बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया करोद ममता तन नाठी पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदय धन ओ माहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई।

प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुरु गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। भये पवित शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई। नानक नाम परगासा, अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारी शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया, जो प्रभ कहे सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया, व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै चोटा खावै अंत गया पछताया। बिन नावै को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम सतगुर पाए चलो हो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भगत।

गर्भ गवानू निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिय भौजल करिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक शरण पया हर।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरण सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी। सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण

आया जल थल महियल पूरन स्वामी घट घट रहया समाया जिस ते उपजिया तिस माहे समाया कीमत कहन न जाए जिसके चलत न जाही लखणी नानक तिसह त्याय राग सूही संत महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गुण गावन लागे हर रंग आनंद जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागै बिनवंत नानक सरण स्वामी।

दुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा।

बन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी, ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवां, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप, जी प्राण मन पाणा राम। जियो पिंड सब तिस का दिया, सर्ब गुणा भरपूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्ब रहया भरपूरे। तां की सरन सर्ब सुख पाए, हुए सर्ब कल्याण। सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे, नानक सद कुरबाणा। ऐसा गुर वड भागी पाईऐ, जित मिलै प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल विख उतर है, हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाइयै प्रभु ते आईऐ, बहुड़ जोन ना आईऐ। गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे, मन चिंदिया फल पाईऐ। हर गुण नित गाए, नाम ते आए। फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया ही राम, संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम। परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी, सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी। जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो।

साजिया संत भगत गुण गावह राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावह राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अति मीठी कथी अकथ कहानी।

प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवा, पै सागरू पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम, बोहि थड़ा हर चरण अरादे मिल सत गुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिया बहुड़ ना मरिया चूकै आवन जाना, जो किश करै सोई भल मानो ता मन सहज समाना, दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए, संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आपनड़ा मन आगे धरिया सर्बस ठाकुर दीने राम, कर अपनी दासी मिति उदासी हर मंदर थित पाई, अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई, सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने, कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने, अणद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम, आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम, सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बीचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर तारिया, मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी, गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रविया सर्ब मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया, जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए, पेख दर्शन नानक बिगसे आप लए मलाए, सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम करते आप वसाया, सर्ब सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर

कामते आए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नास्ती शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे है तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाई है जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद

काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

ज्ञान की जय। बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच पुन्नी, पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट।

पूर्ण भगवान अवगण को नाच तारी पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काली कट कट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे बड़े अमर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल कल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पवज

ज्ञान अधारू गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बिचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जीओ तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर रावण जा।

मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता हम मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिर उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदिया सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया जप

हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप वारिया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो

पुरख सजान, गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान, पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान, अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर, बाहर धोती तू मड़ी अंदर विस निकोर, साध भले अन नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी, आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया, एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया, दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया, नावैनू सब लोच दी गुरमती पाया, तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख।

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत कुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया जरा हाक दी, सब मत थाकी। एक ना थाक समाया।

देव हो। जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी। हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर। चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै। मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो। तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह। ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो। एक कोट पंच सिकदा।

तह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया माने, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देख न सुने अपाखै, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

सांझ परी दह दिस अंधियारा कह रब दास निदान दीवाने चेत सनाही दुनिया पन खाने सूही ऊचे मंदर साल सोई एक घरी फुन रहन ना होई इहो तन ऐसा जैसे कास की ताटी जल गयो कहास रल गयो माटी रहाव भाई बंद कटंब सहेरा वे पी लागे काड सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओह तो भूत भूत कर भागी कह रवदास सबे जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो बावल हुई सो सहो लोरो तै सह मन मह किया रोस।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला।

कहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर शावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेओ रहाओ, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एके कौ नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूझै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज त्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जानी गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेक चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़ै खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिउ, जित हुण खसम ना

दया पत दाता, क्या एह जंत विचारी, मुक्त बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाणी, गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारी, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सवारी, परम पलाने से मनमुख कही है, ना उरवार ना पारी, जिसनो नदर करे सोई जन पाई, गुर का शब्द संभाली, हर जन माया माहे निस्तारी, नानक भाग हुए जिस मस्तक, काल है मार बदारी, बलावल महला तीजा, अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा हुए ता सोजी पाए, तिस ते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वस्से मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में है एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज त्या ना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अब माना, जब अपनी जोत खिंच

है मन अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पाव है, मानत पाहे निदाना। बलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गाव है आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाई, हर जन को मिलिया सुख पाइए, हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ। सदा रंग राते तेरे क्याई, हर जीव आप वसे मन आए, आपे सोभा सद ही पाई। गुरमुख मेले मेल मलाई, गुरमुख राते शब्द रंगाई, निज कर वासा हर गुण गाई, रंग चलूले हर रस पाई। एहो रंग कदे न उतरे साच समाई, अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा। नानक नाम दृढ़ाई पूरा गुर मेरा, बलावल महला तीजा, पूरे गुर ते वडियाई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई। हम मैं माया शब्द जलाई, दर साचे गुर ते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा। अन दिन आनंद हुए मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरन को सम सर वेखै, बहुड़ ना मरे ना जम पेखै, घर ही मैं सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभमान।

लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, राग बलावल महला चौथा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती, ज्यों वाजह जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाउ, माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी, रख ले वह जन अपना, ज्यों प्रहलाद हर नाकस ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना, कवन कवन की गत मित कही है, हर की ये पतत पवन्ना, ओह ढोऐ ढोर हाथ चम चमरे, हर उदरियो परियो सरना, प्रभ दीन दयाल भगत भव तारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वह मेरे ठाकुर, हम पात्र हीन अकर्मा, मेरे मन भज राम नाम रामा, गुरमत हर रस पाईऐ, होर त्यागो हो निफल कामा रहाउ, हर जन सेवक से हर तारी, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर, हर जपिया वड्डे कर्मा, नाम हीन त्रिग जीवते, तिन वड दूख सहम्मा, ओए फिर जोन पुआई है, मंद भागी मूड अकर्मा, हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वड कर्मा, गुर सत गुर नाम दरड़ाया, जन नानक सफल जनम्मा, बलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मोहे बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा करना सकह प्रभ हम, क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जानी उपर

कृपा प्रवतारी मिल सतगुरु पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मत्ती जस करां तुमरै संग लगे से उदरे ज्यों संग काष्ट लोहो तरा साकत नर होची मत मद्दम जिन हर हर सेव ना करा ते नर भागहीन दोहचारी होए जन्म मोए फिर मरा जिनको तुम हर में लोह स्वामी ते नाए संतोख गुर सरा दुर्मत मैल गई हर पजिया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवहु संत मिलहु मेरे भाई मिल हर हर कथा करहु हर हर नाम बोहित है कल युग खेवट गुर शब्द तरहु मेरे मन हर गुण हर उच्चरहु मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परहु रहाउ काया नगर मह राम रासी उत्तम क्यों पाईऐ उपदेश जन करहु सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिले अमृत हर रस पीओ हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतोह चाख देखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसो राम नाम रस राम रसायन हर सेव हो संत जन हो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो हो बुलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो हो नित सेव हो दिन सब रैनी हर जन देखो सत गुर नैनी जो इच्छो हो सोई फल पाव हो हर बोलो हो गुरमत बैनी रहाओ अनक उपाव चित भी यह बहु तेरे सा हुवै जे बात हुवै नी अपना भला सब कोई बांछ है सो करै जे मेरा चेतना चेतैनी मन की मत त्याग हो हर जन एहा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम त्याग हो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरै वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाउ सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बलावल महला पंजवा। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें अपना प्रभ जाता।

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता बलावल महला पंजवा आप उपावन आप सधरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विभव आप ही जरना रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही अशालना जाई शलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बलाव महला पंजवा भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारी बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अग्न सागर बूढ़त संसारा नानक बाहा पकर सतगुर निस्तारा बलावल महला पंजवा तन मन तन अर्पौ सब अपना कमल सो मत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेखत सोबा मेरे आंगन रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों साध संग इस मन है उदारों मत बुद्ध सुत नाही चतराई ता मिलिए जा लय मलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ न माया साध संग सब दुख मिटाया।

बहु तपत व्यापिया शीतल भये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भये परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाई है चीता। हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाउ सफल जन्म होवत बड भागी, साध संग रामह लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमुख न विसरहु परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, भणत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वच्छल पै काट नहारी, संसार सागर अब उतरी पारी। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीर।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई।

ही ना गणी रहाव सगल सरंजाम करी प्रव्यापी भई मनोरथ सो प्रभ जापी अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी भई सिमर सिमर विधाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरे आणिया बिलावल महला पंजवां सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव हर हर नाम जपत नर जीवे मर खवार साख नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा चख मारो साकत बेचारा निंदा कर कर पचह कनेरे मृतक फास गले सिर पैरी कहो नानक जपह जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बुलावल महला पंजवा कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन संयोग मिलो प्रभ अपने पल पल निमख सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर ना काहू बेरे बुलावल महला पंजवां चरण कमल प्रभ हृदय त्याय रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटे दीनो दान सफल जन्म जीवन परवान रहाव अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बुलावल महला पंजवां शांत पाई गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव ताप पाप संताप बनासे हर सिमरत किल विख सब नासे आनंद करहु मिल सुंदर नारी गुर नानक मेरी पैज सुवारी बलावल महला पंजवां ममता मोह त्रोह मद माता बंधन बांधिया अत बिकराल दिन दिन सिजत बकार करत औद फाही फाथा जम कह जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महाबिखम सागर अत भारी उधरहु साधु सांगर वाला रहाव प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंजवां सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद सम्हारिया साध जना हुए कृपाला बिगसे सब परवारिया कारज सतगुर आप सुवारिया वड्डी आर जा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव वण तिण त्रे भवन हरिया होय सगले जी साधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूर्ण इच्छ पुजारिया बिलावल महला पंजवां जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल रहाव साध संग भजिए गोपाल गुण गावत टूटे जम जाल आपे सतगुरे आपे प्रतपाल नानक जाचे साध रवाल बिलावल महला पंजवां मन मै सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करहु मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाव कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बिलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाव राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुर पूरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया, हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए, क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की, नानक कुर्बाणी। बलावल महला पंजवां, राखो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर देहो मुगद उधारे। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवै सुख होए कना मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राखो हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावै। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै, बाद साद अहंकार मह मरना नहीं सूझै, सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अभागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिपवन सूजिया गुर पेट पनीता, महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता, सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड को ते गनी तनीता, कवन वडाई कह सको बे अंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बलावल महला पंजवा, हम बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध, लपट कपट ग्रह बेदया मिथ्या बिख्याद, ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद, राज मिलख धन योगना नामै बिन बाद, रहाउ रूप धूप सुगंधता कापर पोगहाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्घाद, फिरत फिरत मानुख भया खिन भंगन देहाद, एह अवसर ते चूकिया बहु जोन परमाद, प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बलावल महला पंजवा, चरण पए संत बोहिथा तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान मह गुर दसे भेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठत सोवते
हर हर हर चेत रहाउ। पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत, पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सूबा सेत। निश्चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना एतो बिरथारी, मिर्त संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी, तन माने अपनो जियरा फिर हों वारी। रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी, सगल रेन इह मन भया बिनसी अपतारी। निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दूदारी। तन मन शीतल पये अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की पग।

साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापियै अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस पेटिया ताकै सुख परवेस मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिय सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद बलावल महला पंजवा तृष्ण बुझी ममता गई नाठे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृपता सिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाउ संता एक त्यामना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सर्ब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहाऊ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत, तिस स्यों तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना। तन तन सरबस अपना, प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया, सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत, हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते, मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते, नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन, जह जपिय नाम। कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हर आप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखू

बार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत अराध एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवां सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य पहेरा।

राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाउ बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया बलावल महला पंजवां कर तर मस्तक थापे।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। कर्म कारण समरथ है किस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृदय कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भये हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा

निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवां, गुरपुरा आराध्या हुए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम। रहाउ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभे आप, नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बलावल महला पंजवा, तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम। पौ नाथा प्रम मिट गया रव्या नित राम, सार जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम। साई करी सुलखणी सिमरत हर नाम। रहाव प्रगट पए संसार में फिरते पहनाम, नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा, रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत। वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात, गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय। रहाउ बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा, मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता, पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता।

ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई, रहाओ राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई। बलावल महला पंजवां, अपने बाल के आप रखियन,

आप रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

नंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझ चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करो सोई भल हमरे एक नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन बसारन रहाओ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख

गुण पूर रही दिन अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती

सतगुर अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाउ। कर मस्तक धार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान,

पाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पय उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो।

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचर्ज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाऊ, अन बोले को तुही पछान है। जो जीन मह होता रे, मन काय कहां लो डह कहें। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भय मन आनंद। आन ना बियो करता, कहो नानक गुर पै।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक अमाह, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा।

करह करावह मुकर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे अंधकूप मह परे ओ प्राणी परम गबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढै बाहां फरे बलावल महला पंजवां मन तन रसना हर कीना भय आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाउ ज्ञान पते सब भई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपुरै मेरी राख लई अमर

का जपया जाप। कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही।

नाम, जरा मरा कछु दुख न व्यापै, आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइयै एहो निदान, जन्म मरण की कटियै फासी, साची दरगाह।

ला पंजवां अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाऊ सरल समर्थ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीश इहो पदार्थ बड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

काटिया हिन मह हुई गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावन महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा। आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ। आद मद

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचन पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सग

आई। जन्म मरण के मिटे बिसूरे, भ्रम पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहिया परपूरे, नानक सरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। बलावल महला पंजवां, दर्शन देखत दोख नस्ते, कभो न हो वह दृष्ट अगोचर, जी कै संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, सास सास प्रभ तुझह चितारी, कृपा निद प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करहो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापी।

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिस मह प्राणी गलत पया सरल परे न

पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया इहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावल महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण परन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर थुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवां तुम समरथा कारण करन ताकन तात गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कस ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा निद जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मिरही अरे बासै हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संगले मोहे उधरो बलावल महला पंजवां ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा तुमरो

अनंत तरंगा जनपार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाहीं कोई पहुँ

जानू हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जीओ नदर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निदान ना

पतचपावन प्रभ बिरद तुम्हारु हमरे दुख हृदय मत तारु जीवन प्राण हर धन सुख तुम्ही हो मैं पटल कृपा कर जारु जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारु जन नानक प्यास

फुसल पया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आन

करहु अनग्रहु पतत उदाहरण राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरण नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी शरण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पीट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

हाव है हार कजर बस्तर आभरण कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब करया वैरी रहाव सरन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मलावहु कब करया वैरी सुनो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अंग मटावहु तव कर ही लालन पावहु कब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी

द्रौपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानु, साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविया अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जोत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊ सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उदार, पै तरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनद पूर्ण साध। नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत। तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जम ना पेख नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जा की महा बिखड़ी कार। ता की मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए। कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार। प्रभ करहो साधु तूर, नानक मन सापूर। बलाव महला पंजवां, प्रभ जन्म मरण निवार। हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग। मन मिष्ट हर हर रंग।

सरनाई पै पंजनाम रार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाहे गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण दे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभु तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरन भरत प्राण ज्यो लोभी है धन दान ज्यो दूध जल है संजोग ज्यो महा खुदियारथ भोग ज्यो मात पूत है हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित नसंग मैगल है काम बंद ज्यो ग्रस्त

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवण जाने। क्या लै आवे है क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटां खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत आकाश किए बैसन कौ थाउ, रात दिनंत किए पौ पाउ। जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा। तृतीया ब्रह्मा

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा

डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोह पाजे दूजै पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अभागे सतगुर भेटै सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जां कै मस्तक लिखिया लेख ताकै मन

कहाय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

कह कोई। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किसका हो।

मुग्ध गुआर नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यो रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन वेल सुंदर देख फिर साधारिया।

शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ भंजनो जोत सबाएड़िए त्रिभवन सारे राम घट घट रव रहिया अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचा आप मार मलाई है हम मैं ममता लोभ जालो हो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाने तार तार नहारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उरतारिया बलावल महला पहला मैं मन चाऊ घना साच बगासी राम मोही प्रेम परे प्रभ अबनासी राम अवगतो हर नाथ नाथ है किसे पावे सो थी कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिये मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे पेख पवनी हठ ना जाना नानका सच गह रहे पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपत सुभाऊ दूजा चाकरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन्याड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूजे ओ शब्द समाए आप गवाए त्रे पवन सोजी सूजे रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहिया सर्ब ठाई नानका उरतारिया महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मार रीजै शब्द सीजै त्रै लोक नाथ पछाणे मन दीक डोल ना जाए कतही अपना पिर जाने।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

वास आहो सखी असी तिरका मंगल गाव है तज मान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तज मान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

चित्तर चंचल अनक पाव दिखावे होए तीठ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु मैं नाम अंधले टोहनी मोहे अनाथ प्रिय नाथ ज्यों जानो त्यों रखो चतराई।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्हड़े अप

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिए जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवियै ता दरगाह पाइए मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारियै चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाइया आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजै पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारिए बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुगे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सतगुर पाई।

जुग मह विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चित लाय नानक जिन को नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाओ हम मैं रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी सब वडियाइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाईए गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाईए गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाईए जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाईए। सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाई। गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख होआ सच वस्या मन आई सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दह दिस पसरिया गुर कै सहज सुभाए। नानक जिने अंदर सच है से जन शपहना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाईए जां कहो नदर करे मानस ते देवते भए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन्ना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई। क्या होवै किसे ही की झख मारी जां सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब झख झख।

चितलाई हर सुख पल्लर त्यागिया नाम विसार दुख पाई मन मुख ज्ञानी अंदले जन्म मरह फिर आवे जाए कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताई जिस कर्म हो तिस सतगुर मिले सो हर हर नाम।

फित किया है। सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है। सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है। जे हर प्रभ बख्श करे।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान ना लागे दुख विचकार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सतगुर भेटिए ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरो भ्रम भउ भागे। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजे पाए सूते कबहु ना जाग है माया मोह प्यार। नाम ना चेत है शब्द ना विचार है इहो मनमुख का विचार हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वेमो।

इस जुग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हम मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

गुरमुख हर नाम धन ना खट्यो से दवालिए जुग माहे ओए मांगदे फिर है सब जगत मह कोई मुहे थुक ना तिनको पाए पराई बखीली करह अपनी प्रतीत खोवन सगवा भी आप न खाहे जिस धन कारण चुगली करह सो धन चुगली हाथ ना आवे ओए पावे तिथे जाहे गुरमुख सेवक पाए हर धन मिलै तितो कर्महीन लै ना सकै होर थै देश संतर हर धन।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाम। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर तन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, ता कोई किहो मंग ले। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर तन जोर कीता किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे पृष्ठ थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर राम रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजल निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाऊ। बिखै बिखै की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया,

सागरयान लीपत जियो गयो ताना बाना कछु ना सूझे हर हर रस लपटयो हमारे कुल कौने राम कहयो जबकि माला लई नपूते तब ते सुख ना पयो रहाओ सुनो जिठानी सुनो देरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाखस नाख बिदरयो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां लै उदरयो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा।

ध्रुव प्रहलाद लवाजा बलावल राख लेहो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेड पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्ह नवाज साज हम किए तिसै बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओह सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत काल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस।

होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाऊ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

केश किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरे अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, तां आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा। जित दिन उनका सुआओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरै दुख सखासा। किसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश लै जप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइए, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइए, मेरे मन हर जप हर नित पड़इए, हर बिन को मार जवाल ना साकै, तां मेरे मन कायत कड़इए, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइए, हर एक को बोले हर एक बुलावे, गुर पूरे हर एक दिखइए, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइए, निह कपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइए, जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा तिहइए, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़इए, गोंड महला चौथा, हर

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावहु, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता। भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहो संभाए ले, पग धार है सास लेख लै। तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले। अपने रह

राग गोंड महला पंजवां चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल तनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवां।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेत न रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा काय अंतर जामी कर कृपा।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुआ जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा कीत मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

बुद्धि के हाथ रहाउ। सिमरत शास्त्र वेद पुराण, पार ब्रह्म का करह वखियान। जोगी जति वैष्णो रामदास, मित नाही ब्रह्म अविनाश। कर्ण पलाहा करह शिव देव, तिल नहीं बूझ अलख अपेव। प्रेम भगत जिसे आपे दे, जग मह विरले के। मोहे निर्गुण गुण किशु नाही, सर्व निदान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गुण महला पंजवां, संत का लिया तरत बदारो। संत का निंदक आकाश ते टारो। संत को राखो अपने जी नाल, संत उदारो तत खिण ताल। सोई संत जे पावे राम, संत गोविंद कै कै काम। रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात, संत कै संग बसे दिन रात। सास सास संत है प्रतपाल, संत का दुखी राज ते टाल। संत की निंदा करो ना कोए, जो निंदा किसका पतन होए। जिस को राख सिर जनहार, चख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का पया बसास, जियो पिंड सब तिसकी रास। नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत। गुण महला पंजवां, नाम निरंजन नीर नारायण। रसना सिमरत पाप बलायण, रहाओ नारायण सब माहि निवास। नारायण कट कट परगास, नारायण कहते नरक ना जाहे। नारायण सेव सगल फल पाहे, नारायण मन माहे आधार। नारायण बोहित संसार, नारायण कहत जम भाग पलायन। नारायण दंत पानी दायन, नारायण सद सद बक

साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जाको राखे रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपे निरंकार।

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कुनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां।

अमराव पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसै तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहु राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया अन दिन तापे जाही, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछै परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वा कै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाउ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरेत होई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोदे पांच पलीत है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जने ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन्न कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग निकावन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बगते दूधा धारी गुप्ती खावे है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाऊ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मृगाय प्राण तजे वाको ध्यान ना जाय ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाओ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी

तरबे ना जानो, बाप बीठला बाह दे रहाउ, नर ते सुर होए जात निमख मैं, सतगुर बुद्ध सिखलाई, नर ते उपज सुरग को जीत्यो, सो अवखद मैं पाई, जहां जहां तू नारद टेके, नैक टकावो मोहे, तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे, नामे की निज मत ए, गोंड मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलप है, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाऊ, जैसे गाय का बादशाह सूतला, थन चोखता माखन कूटला, नाम देहो नारायण पाया, गुर भेटत अलख लखाया, जैसे बिखै हित पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा, राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा, हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंदलहे की लाकरी, हरे नमस्ते हरे नमः, हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ, हर हर नाक्ष हरे प्राण, अजय मलकियो बैकुंठ थान, सुआ पढ़ावत गनका तरी, सो हर नैनहु की पूतरी, हर हर करत पूतना तरी, बाल कातनी कपतह परी, सिमरन द्रोपत सुत उदरी, गौतम सती सिला निस्तरी, केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली कौ दिया, प्रणव नाम ऐसो हरी, जास जपत पै अपदा टरी, गोंड पैरो पूत सीतला तावे, खर बाहन उहशार उडावे, हौ तौ एक रमैया लै हो, आन देव बदलावन दै हो, रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावे, बर्द चढ़े डौरू डमकावे, महामाई की पूजा करै, नर सह नार हुए अवतर, तू कहियत ही आद पुहानी, मुक्त की बरिया कहां छपानी।

प्रसाद मुकंद मुकंद जपहु संसार बिन मुकंद तन होए अवहार सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुग तार उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै साधका निंदक कैसे तरे सर पर जानहु नरक ही परे रहाउ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्प नार श्रृंगार समेत सगली सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बिराना सौंडे करे निंद बहु जोनी हांडे निंदा कहा करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोद साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सधारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे त्याना कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाउ कबहू जी अड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जी अड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजे माई एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देव है अंते हुए सखाई राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नित साहेब सदा चिंत मन माही आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये रहाउ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी घर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा भीतर।

तौ नानक एक मिले इन बिद सागर तरिया जीवत्या इयों मरिए रहाउ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोड़ी मंगण कै ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाउ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरे सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाउ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमुले ध्यान रूप हुए आसन पावे।